0: Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day address, placed women empowerment strength of India's youth at the heart of the nation's development journey. The Prime Minister highlighted the growing role of women across sectors and called on young Indians to drive the country towards a developed India by 2047. Calling women's representation the need of the hour, the Prime Minister urged all political parties to come together to ensure implementation of 33% representation for women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. The Prime Minister said that women's leadership is essential to crises. He highlighted the contribution of women representatives in panchayats, municipalities and municipal corporations.
1: हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आग्रह करता आइए 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए।
0: After the Gen Z protests in the national capital, Prime Minister Modi reached out to the youth of the country. Hailing India's Yuva Shakti, Prime Minister Modi said that the young generation will have a key role to play in realizing the vision of Viksit Bharat by 2047.
1: मेरे देश की युवा शक्ति है, विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: The Prime Minister announced a major skilling push for India's youth, saying 1 crore young people will be trained in artificial intelligence skills over the next year. He also announced free online coaching for competitive examinations, aimed at helping young aspirants for poor and middle-class families to cut down on the high cost of coaching.
1: हमारे मध्यम वर्ग परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आस पास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है।
2: हर वर्ष राष्ट्रीय पर्व का
0: After delivering his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi interacted with school children at the Red Fort. Prime Minister Modi stopped to interact with them and shook hands with several, creating an emotional moment at the culmination of his Independence Day address. Prime Minister Narendra Modi unveiled a 7-point economic reform framework to accelerate India's journey towards a developed nation status by 2047.
1: सप्तधारा की इन 7 शक्तियां, 7 शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है, एक होलिस्टिक